0: ओम बेकिरोचनो ओम गोने नमः सवाजक्य अक्षतमों नैनो
1: श्री लिप्लोगिते
2: एवे व्रोसेश्यस्तासेते